अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: गजाननंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री कैकई नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारो भैयन की
1: जय।
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्म भूमि की श्री कृष्ण जन्म भूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय।
0: जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय।
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय।
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत

0: अर्जनम भवीजानाम अर्जनम सुगतम पदाम तर्जनम यमदूता राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नम महाराज की संत बड़े परमार्थी भेतरे मधुत राम नाम की गर्जना भाग्याय मधुत श्री सीताराम नम महाराज की श्री राम लला भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम
1: जय श्री राम
0: जय जय श्री राम।

ईश्वर के सृजन में सर्वश्रेष्ठ सृजन है मनुष्य की काया और संसार की माया। माया के माया जाल से कोई नहीं बच पाया। माया का मायावी संसार मनुष्य को कई कई जन्मों तक अपने फंदे में फंसने के लिए मजबूर करता रहता है। जन्म जन्म तक माया के मोह का शिकार होकर जब मनुष्य दुखी होता है तो उसे मानव देह के साथ संसार की नश्वरता का ज्ञान होने लगता है। वो माया के विकराल पंजों से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता है। उस समय मनुष्य की अंतरात्मा की पुकार उससे ही प्रश्न कर बैठती है।

श्री गोविंद गीता अध्याय 18 है, मोक्ष सन्यास योग। श्री मद्भगवत गीता के अंतिम एवं सबसे बड़े अध्याय में इस संवाद का सारांश है। अर्जुन सन्यास व त्याग के विषय में जानना चाहता है। श्री भगवान कहते हैं कि देह कष्टों से भयभीत होकर कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म के फल का त्याग ही त्याग का मर्म है।

प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर श्री कृष्ण कर्ता, धृति, ज्ञान, कर्म एवं सुख आदि का विस्तृत विश्लेषण करते हैं।

तत्पश्चात श्री कृष्ण परम गुह्यतम वचन कहते हैं कि हे कौंतेय, तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो, वह मेरे भक्त बन जाओ, सभी धर्मों का परित्याग कर मात्र मेरी ही शरण में आओ। मेरा यह वचन सत्य है कि तुम सभी पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करो।

श्री कृष्ण इस महान संवाद के पठन श्रवण एवं वाचन का महत्व तो बतलाते हैं। वह अर्जुन से पूछते हैं कि इस दिव्य संदेश के बाद क्या तुम्हारा मोहजन्य अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन का उत्तर सकारात्मक है। संजय, धृतराष्ट्र के समक्ष इस दिव्य संदेश व भगवान के दिव्य विश्व स्वरूप को स्मरण करता हुआ रोमांचित होकर कहता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण व श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहां नीति है, ऐश्वर्य है, धर्म है, वह उस पक्ष की विजय सुनिश्चित है।

श्रद्धालु प्रभु भक्तों, गोपाल नंदन दुहते जिनको उपनिषद सब गौ समान, पार्थ वत्स हर साधु भक्ता, गीतामृत है दुग्ध महान। श्री हरि मुख से उद्घोषित इस मधुर वाणी का आपने रसा स्वादन किया। इस दिव्य संदेश के पठन, वाचन, स्मरण एवं श्रवण का लाभ अलौकिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि पवित्र गीता शास्त्र करे जो पठन प्रेम से युक्त हो, प्राप्त करे वो विष्णु धाम को भय शोकों से मुक्त हो। सचमुच गीता सुवाचन व श्रवण परमेश्वर की अनन्य भक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि मंत्र एक है नाम उसी का, कर्म एक है उसकी सेवा, शास्त्र एक है गीता जिसकी, एक देव की सुख है देवा। आइए इस सर्व मंगलमयी, सर्व अर्थमयी, सर्व धर्ममयी, सर्व शास्त्रमयी, स्वयं परमेश्वर की प्रतिनिधि स्वरूपा श्री मद्भगवद गीता की प्रेम पूर्वक आराधना करें।

विश्व की उत्पत्ति, उसके विकास और परिवर्तन का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने ही सरिताओं को सागर यात्रा के आरंभ में शिवास्ते पंथाः संतु के आशीष दिए हैं। नदी जो कि स्वभाव से तरल उर्मिल और वत्सल है, तथा महाभारत कार ने जिसकी विश्वस्य मातर कहकर पूजा की है, ऐसी एक नदी उसका आज स्मरण करता हूं। कृतयुग में वो कृतवती, त्रेतायुग में गिरिकर्णिका या मणिकर्णिका, द्वापर में विधुमती चंदना या चंदनावती, और कलयुग में

0: के प्रवाह को स्पर्श करने का मन कर रहा है आज। साभ्रमति
1: वन वन महाकाल कैसे स्मरण किया मुझे?
0: पल भर रुक जाओ, तभी तो कहूँ ना।
1: आप भी कब रुके हैं? बहते रहना, यही तो हम दोनों का स्वभाव है ना? चलिए बातें करते करते साथ चलते हैं।
0: तुम्हें देखता हूँ और गहराई में जाता हूँ तो अतीत जीवंत हो जाता है। 88,000 ऋषियों ने

0: की है।
1: यह मेरा परम सौभाग्य है प्रभु।
0: आप काश्यप गंगा के नाम से भी लोक हृदय में विराजमान हैं, और फिर आपकी मुक्त धाराएं अरण्य में होकर आनर्थ और श्रभ कहे जाने वाले आज के मेवाड़ और गुजरात में बहने लगी।
1: हाँ प्रभु, और अरावली की गिरिमाला में छलांग भरने से डरती हुई मैं इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होकर काले पहाड़ से निकल पड़ी। ऐतिहासिक नगरी उदयपुर राजस्थान के जिला परिषद के प्रमुख श्री भैरवलाल कारनोट भी मेरे बारे में कुछ यही कह रहे हैं।
2: राजस्थान के अंदर लगभग 44 किलोमीटर के अंदर का पानी साबरमती में जाता है, जिसको साई और वाकल दो नाम से नदियां पुकारी जाती हैं। साई नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका पानी जवई बांध को जाता है, जो पीने के उपयोग और उस इलाके में काम आता है। बाकी पानी सारा बह करके साबरमती में जाता है, और जो हिस्सा हमारे राजस्थान में से निकल रहा है उसके किनारे पर आदिवासी और गरासिया दो जाति के लोग विशेष तौर से बसते हैं, और ये इनका पानी का उपयोग लिफ्ट करके चाहे वो पंपिंग सेट से हो, चाहे इलेक्ट्रिक पंप सेट से हो, चाहे रेंट से हो, चाहे चरस से हो, उसका उपयोग अपने जीवन को खाने पीने की वस्तु और एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते हैं, जिससे अपना भरण पोषण करते हैं। इसी के साथ इस इलाके में अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, और इसमें बीच बीच में पोखे जा गए हैं, तो विशेष तौर से 3/4 हिस्सा जो इसका क्षेत्रफल है, 3/4 हिस्सा टोटल फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट काफ़ी घने थे लेकिन अब काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, और नए फॉरेस्ट लगाने की काफ़ी कार्य हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी ही ये इलाका वापस आपके पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा।
1: भक्ति में लीन ऐसी मीराबाई की चरण धूली सिर पर चढ़ाकर मैं बाप्पा रावल, महाराणा प्रताप तथा भामाशाह के शौर्य एवं औदार्य की कथाओं को मन में रखते हुए आगे बढ़ी तो देखा मेरे किनारे पर असंख्य साबरों का वास।

0: यह आ गई नदी सेन, ये मेरा प्रथम संगम, और अब आएगा शबदेश।
1: हाँ, यानी कि साबर कहाँ था?
0: वही देलवाड़ा गांव के पास, गोगुंडा के गणेश के आशीर्वाद से पावन वाकल ने मेरा स्वागत किया। विशाल जलराशि युक्त वाकल से मिलने के बाद ही मेरी देह बंधी।

दक्षिण तट पर बनासकांठे के जंगलों का दांता प्रदेश और वाम तट पर ब्रह्मा जी का महिमावान खेड़ ब्रह्मा विस्तार, दोनों ही आदिवासी प्रदेश। दांता के शरणाली आश्रम की शिक्षा प्रणाली

0: यानी आदिवासियों के जीवन परिवर्तन की पगडंडी।
1: हमारा नाम सुमेर सिंह गंभीर सिंह सोलंकी, प्रमुख तालुका पंचायत डांटा, जिलो बनासकांठा।
0: डांटा तालुका सुमेर सिंह सोलंकी, अध्यक्ष तालुका पंचायत डांटा, जिलो बनासकांठा। डांटा तहसील के पूर्व विभाग में पर्वतीय विस्तार है, वहाँ अधिकांश आदिवासी लोगों की बस्ती है। आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। डांटा तहसील में साबरमती के तट पर सोनाली आश्रम की स्थापना 1957 में की गई थी। इससे पहले आदिवासियों की स्थिति बहुत कंगाल थी। अब शिक्षा और खेती के क्षेत्र में हम आदिवासियों की स्थिति बहुत ही अच्छी है।
2: माकड़, चंपा और हड़ाद के चूने के पत्थरों की खनिज संपत्ति से मेरे तट पर सीमेंट उद्योग का श्री गणेश हुआ। ये तो बिल्कुल आज ही की बात कही जाएगी। खेरोज के पुल के नीचे स्नान करते हुए यात्रीगण और मेरे पट को हरियाला रखने वाले खरबूजे और टमाटर की बाड़ियों की बात किए बिना तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है।
3: रावर शंकर भाई, रेवा भाई, गांव खेरोज ना वतनी से साबरमती में।
0: मैं रावल शंकर भाई, रेवा भाई, खेरोज गांव का रहने वाला हूँ। साबरमती नदी के अंदर सब्जियां उगाने का व्यवसाय करता हूँ। टमाटर, बैंगन, लौकी जैसी सब्जियां उगाते हैं और इससे हमारा गुजर बसर कर लेते हैं। हमारे पूर्वज भी यही किया करते थे और आज तक हम भी यही काम कर रहे हैं। हम ये सब्जियां लेकर खेड़ ब्रह्म में जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना पेट पालते हैं।
3: जैसे हमारा गुजरान चला जैसे।
1: टमाटर, काकड़ी, दूध।
0: मेरा नाम सीवी। सब्जियां और खरबूजे तरबूज उगाकर 2-3 हजार रुपये कमा लेते हैं और बच्चों का पेट पाल लेते हैं। हम जो कर रहे हैं वही काम हमारे बच्चे भी करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। हम गरीबों की ओर कोई देखता तक नहीं तो नौकरी का प्रश्न ही कहाँ उठता है। साबरमती ने जो कुछ बोया है वो उग आए तो हमारा गुजरान चल जाएगा, पर फसल अच्छी न हुई तो फिर हमारा तो ईश्वर ही है।
4: और उस पार साबरकांठा का पोशीना। यहाँ आपका पट पथरीला, गोल गोल पत्थरों वाला। पोशीना के आदिवासी देव को मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। उत्सवों और मेलों में रचे बसे आदिवासियों ने आपके दोनों किनारों को जीवंत रखा है। आगे जाने पर खेड़ ब्रह्मा के लांक, इधर के मारवाड़ तथा दांता के विदलासन के पास आपको हरणा

0: खजुराहो तथा भुवनेश्वर के तुल्य मंदिरों के अवशेष आज भी भव्य अतीत की प्रतीति कराते हैं।
1: आपके ऊपरी प्रदेश में भारी वर्षा होने पर आप छलक जाती और आपका पानी तट पर स्थित प्रदेशों पर फैल जाता। इसी बात को ध्यान में रखकर खेरालू तहसील के धरोई गांव में आप पर बांध बनाया गया है।
2: धरोई डैम जो यहाँ जो देख रहे हैं वो धरोई डैम का जो विभाग है यहाँ का मैं सारे पाला जी जो यहाँ मैं सेवा बजा रहा हूँ। मेरा नाम है दिलीप पंचाल। ये नदी है साबरमती नदी अरवली हिल्स में निकलती है। ये धरोई डैम बनाने से हमारे 140 गांवों की असर हुई है। ये सब लोगों को हमने पुनर्वाहरिएट किया है दूसरी जगह पर। ये डैम बनाने से कुल मिला के 56,000 हेक्टर की वो प्लानिंग है। इसके अलावा अहमदाबाद को हम पानी देते हैं, AEC को पानी देते हैं, जी बोल को पानी देते हैं गांधीनगर में और गांधीनगर टाउन में भी पानी देते हैं।
1: वो दूर दिखाई देता है इबेरिया।

0: सातवीं सदी में यहाँ चीनी प्रवासी ह्यूएन त्सांग आया था। आज ईडर अपने ग्रेनाइट पत्थर और खराही के व्यवसाय से मशहूर है। एक लारा महादेव के दर्शन कर आगे बढ़े इससे पहले इस प्रदेश में पैदा होने वाले गुजरात के मूर्धन्य कवि श्री उमाशंकर जोशी, उपन्यासकार श्री पन्नालाल पटेल को याद कर लें।
1: पूरा साबरकांठा कपास का घर माना जाता है। आपके नाम से जुड़ी साबर डेरी और यहाँ की सहकारी प्रवृत्ति को कैसे बुलाया जा सकता है? ये रही साबर डेरी के अध्यक्ष हेमा भाई पटेल।
2: साबरमती के किनारे पर साबरकांठा जिला में सहकारी प्रवृत्ति द्वारा 10 सालों को 12 तीन फैक्ट्री डाली गई है। इसमें से कपास का रोपण किया जाता है और मार्केटिंग अच्छी तरह की जाती है। इसकी इससे खेड़ों को सारी आमदनी मिलती है। आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जो कपास के सहकारी पर हम सब लोग सक्सेस हुए उसके मुताबिक हमने बिजनेस को अच्छी तरह खतरा करने का निश्चय किया। इसके फायदे में हमने सबसे पहले दूध का धंधा चालू किया। 1300 जितनी मंडियों हमने बनाई हैं। वो संगठन द्वारा हर एक गाँव में से हर रोज 6 लाख लीटर जितना दूध इधर आता है। पूरा मिलकर हमने 40 करोड़ का लाभ खेडूतों के लिए दिया है अमृतगिरी के पास से। और साबरकांठा जिला का एक अच्छा उद्योग यहाँ सहकार संगठन द्वारा आपके सामने मौजूद है।
1: सामने किनारे पर विजयपुर तहसील का ख्यातनाम जैन तीर्थ महुड़ी, जो श्री घंटाकरण जी

0: महुड़ी के पास ही खड़ाए का वणिकों का सुप्रसिद्ध यात्रा धाम यानी कोटियार्क का मंदिर। इस स्थान पर पहले एक बौद्ध नगरी थी।
1: इस परम धाम का विशेष महत्व

0: संगम के बाद ही सावर आप साबरमती बनती हैं, एक महान नदी का रूप धारण करती हैं। यहाँ 40 मीटर ऊंची चट्टाने, घनी बंगराई और कराल कोहर आपके प्रवाह को अनोखा सौंदर्य प्रदान करते हैं।
1: यहाँ से आगे वरसड़ा गांव में मुझे जर्जरी, सुरसरी तथा अमरवीन नदियां मिलती हैं। ये मेरा 5वां संगम। इस स्थान को ऋषिकेश कहा जाता है। देखिए, हम दलकेश्वर महादेव के सानिध्य में पहुंचे। 40 मीटर की ऊंचाई पर आसन जमाकर बैठे हुए ये महादेव अपने चतुष्कोण शिवलिंग के कारण विशिष्ट नजर आते हैं।

0: करनी होगी। पर इससे पहले मेरे तट पर स्थित अमरापुर गांव की ग्राम भारती संस्था को देख लें, क्योंकि इस विस्तार का वर्तमान है ग्राम भारती। इसके बाद यहाँ के संचालक श्री मोती भाई चौधरी से सुने, यही उचित होगा, है ना?
1: ये गांधी ने जो बताया था राष्ट्र शिक्षा के बारे में, उद्योग के साथ शिक्षा, प्रमुख से भी अलग न हो शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी, और ऊंच नीच का जो भेद, जाति पाति का जो भेद है, श्रम करने वाला के प्रति जो ऊंच नीच का भेद है, इसको निर्मूल करना है तो सब बच्चे साथ में रह के, ऊंच नीच का कोई सवाल रहे नहीं, सब साथ में रहे और काम करते जाए और शिक्षा प्राप्त करे, ऐसा जो बुनियादी शिक्षा का ढांचा उन्होंने बताया था उसको नजर में रख के हमने उत्तर बुनियादी का

0: इधर ये संस्था करके शुरू कर दिया। हम साबरमती नदी के किनारे के पर बैठे हुए गांव के साथ रहते हैं, तो साबरमती नदी ने जीवन दिया, इसके साथ साथ इस जमीन को हमने रिक्लेम करने का शुरू किया। लोग हंसते थे कैसे जमीन में कैसे खेती हो सकती है और फिर से ये खेत कैसे बन सकते हैं, लेकिन आज सब देख के अचरज रह जाते हैं कि ऐसा हो के रहा है और अच्छी खेती भी हो रही है।
1: अपनी प्रकृति से भारतीय तक मैं जंगलों तथा पत्थरों में भटकती रहूंगी। भारपुर से धरवई तक का मेरा प्रवाह पथरीला और ढलाऊ है। मुझमें नहीं का गांधीर्य, तापी का सामर्थ्य या नर्मदा की भव्यता नहीं है।
2: और ये सामने दिखाई देती है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद जहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा।
1: हाँ, समग्र राज्य की राजकीय आर्थिक तथा लोक कल्याण प्रवृत्तियों का केंद्र यानी गांधीनगर मेरे किनारे पर स्थित इस आधुनिक नगरी के निर्माण नक्शे में फ्रेंच स्थपति ला कॉर्बूसे का असर दिखाई पड़ता है।
3: That Gujarat, Syrian, and the trade just not between India and West Indies, the news is that West Indies are 87%.
2: देखो, साफ़र देखो, खेल रंग लाया है। ये तो है गुजरात का मोटेरा स्टेडियम। गुजराती लोग खेल को दिमाग से खेलते हैं, पराजय को हंसकर स्वीकार कर लेते हैं और विजय को मुट्ठी में बरकरार रखते हैं।
3: Lloyd from picking up a single. Lloyd is on 36 and West Indies 88 for the loss of 3 wickets.
2: साबर, यहाँ से आप अहमदाबाद की बन जाती हैं।
1: हाँ, और यहीं पर होता है मेरे अस्तित्व के अर्थ का आरंभ।

0: भगत ने महात्मा गांधी का नाम दिया। उन्होंने मेरे पश्चिम तट पर मेरे ही नाम से बसे साबरमती गांव में जग प्रसिद्ध आश्रम की नींव डाली और मेरे ही नाम से जोड़ा साबरमती आश्रम। आज इस नाम का उल्लेख करते हुए मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। बापू स्वयं साबरमती के संत कहलाए और मैं धन्य हो गई।
1: यहाँ आपको चंद्रभागा नदी मिलती है, यह आपका छठा संगम। आज का अहमदाबाद यानी किसी समय के आशाधीन का आशावल, फिर आशावल समृद्ध कर्णावती बना। उस समय कर्णदेव इसका राजा। अहमदाबाद की नींव ईस्वी सन 1411 मार्च की 34 तारीख को रखी गई। उसमें मुस्लिम संत शेख अहमद खत्री गंजबख्श की प्रेरणा रही।

0: अहमदाबाद के निर्माण का प्रथम नमूना है भद्र का किला। मुस्लिम स्थापत्य में 100 खंभों वाली जामा मस्जिद, रानी महजियो, कला कारीगरी में अनन्य ऐसी सीधी सईद की जाली वाली मस्जिद, शाह आलम का रोजा तथा समग्र दुनिया को स्थापत्य कला की एक अद्भुत और आश्चर्यजनक भेंट देने वाली झूलती मीनारें मुख्य है।
1: साबरमती, आपके तट पर बसा अहमदाबाद व्यक्ति विशेषों से भी भारत भर में अनोखा रहा है। अहमदाबाद नाम देते ही बाबा माणिकनाथ, यहाँ के टकसाल में काम करने वाले ज्ञानी कवि

0: मैं इस शहर के नगरपति सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष दादा साहेब मावलंकर, सब किया ताजा होती है।
1: इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ शिरोमणि कस्तूर भाई लाल भाई, विज्ञान विभूति डॉक्टर विक्रम सारा भाई और ऐसी असंख्य व्यक्तियों की याद हमें गौरवमय बनाती है।
0: अहमदाबाद में फिर से जैसे अंतरिक्ष का आरंभ हुआ। सेठ रणछोड़ लाल ने 1859 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की और देखते ही देखते अहमदाबाद का आकाश नीलों की चिमनियों से छा गया। समग्र भारत की राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हलचल का केंद्र साबरमती आपका किनारा बना। यहीं से भारतवर्ष ने नए युग के आगमन की बधाई दी।
1: प्रभु, आप इतिहास की याद ताजा कर रहे हैं और मैं रोम रोम पुलकित होती जा रही हूँ। मेरे बालू पट पर 1930 की 8 मार्च के रोज आयोजित सभा में आजादी की लड़ाई का जुगल बजा। मैंने देशवासियों के मिजाज को पढ़ा, इतिहास को करवट बदलते देखा और 12 मार्च की दांडी कूच की अभूतपूर्व घटना महाकाल आपके सीने पर भी तो अंकित हो गई। कौवे कुत्तों की मौत मरूंगा लेकिन स्वराज लिए बिना आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कर उस मुट्ठी भर हड्डियों वाले मानव ने जब दांडी यात्रा को यहाँ से पहला कदम उठाया तो पंथर काल देवता आप और मेरा जल दोनों थम गए।

0: साबरमती, यहां तो आपका जल निर्मल है, पर आसपास की गंदगी हटाने के प्रयास में आपके गीले हाथ मैले हो गए, आप दूषित होने लगी।
1: और अहमदाबाद छोड़ते हुए तो मैं

0: ये है ढोलसा तहसील के सरगवाला गांव के पास वाला टीला यानी लोथल। हड़प्पन संस्कृति को सुरक्षित रखकर दब जाने वाली एक पुरातन नगरी जिसके उत्खनन से ईसवीसन पूर्व 1100 तथा ईसवीसन पूर्व 600 के इतिहास के बीच की एक टूटी कड़ी जुड़ गई और एक लुप्त संस्कृति पुनः प्राप्त हुई। वैठा के पास आपको मेसो माध्यम और खेदी को साथ लेकर वात्रक मिलती है। ये आपका 7वां और अंतिम संगम। खारी तथा हाथमती के साथ मिलकर आप सातों नदियों का संगम स्थान सप्तधारा तीर्थ भी कहा जाता है। साबरमती खंबात की खाड़ी दिखाई देते ही आप क्यों उतावली हो गई?
1: मेरे बहते पानी में जो देखा जाना और भोगा कुछ साफ आपने याद करवा दिया। बहना बहाना और बचाना यही है मेरा धर्म।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव

प्रामाणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि परमपिता ब्रह्मा के आदेश से प्रजापति दक्ष ने देवी वीरुणी से विवाह किया। इन दोनों के दैहिक संबंध द्वारा सृष्टि में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ हुई। फिर ब्रह्मा जी के ही आदेश पर दक्षराज ने 3000 वर्ष तक मां शिवा की आराधना की। मां शिवा ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वो दक्ष पुत्री सती के रूप में अवतार लेंगी। देवी सती के बड़े होने पर ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों ने रुद्र रूपी शिव से अनुरोध किया कि वे देवी सती को अपनी अर्धांगिनी बना लें। जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए महादेव उनकी बात मान गए, परंतु एक बार अपने कथन पर संदेह करने के कारण उन्होंने देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: विप्रवर सूद जी, रुद्र सती वियोग का ये प्रसंग तो बहुत दुखदाई था।
2: महाभाग शौनक जी, दुख की पराकाष्ठा होना तो अभी शेष थी।
1: पराकाष्ठा? सूत जी, आप ही ने तो बताया था कि इस घटना के बाद भी रुद्रदेव तथा सती ने वैवाहिक धर्म का निर्वाह किया।
2: ये सत्य है। दीर्घ काल तक कैलाश पर निवास करते हुए वे दोनों जग कल्याण के कार्य करते रहे।
1: तो फिर आप दुख की किस पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं मुनिश्रेष्ठ?
2: देवी सती की आत्मदाह की।
1: क्या, देवी सती ने आत्मदाह कर लिया? परंतु क्यों?
2: कथा विचित्र होने के साथ साथ लंबी भी है। एक बार गंधे मादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया के साथ विहार कर रही थी।
3: इन उत्तुंग पर्वत शिखरों को छूकर आते पवन के ये झोंके देह को ही नहीं आत्मा तक को विभोर कर रहे हैं।
4: हाँ देवी सती, कैलाश का वातावरण ही कुछ ऐसा है। यहाँ के मन मन बयार का स्पर्श पाते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है।
3: सखी विजया, ये विशाल गगन चुंबी वृक्ष इस बयार में देखो कैसे झूम रहे हैं। ऐसा लगता है पक्षी भी आनंदित हो रहे हैं।
4: अरे, लगता है अपने प्रिय से विलग हो ये पपी ही उसे ढूंढती फिर रही है।
3: मानसिक रूप से विलग तो मैं भी हो गई हूँ अपने प्रियतम से।
4: हाँ, आपने कुछ कहा देवी सती?
3: हाँ, नहीं सखी विजया, मात्र एक विचार कौंड गया।
4: अरे, ये चंद्रदेव एकाएक गतिमान कैसे हो उठे?
3: सखी, चंद्रदेव और रोहिणी इस रात्रि काल में कहाँ जा रहे हैं?
4: पता नहीं देवी।
3: जा, शीघ्रता से जाकर पूछ कर दो। आ
4: अभी आई सखी। चंद्रदेव, चंद्रदेव। चंद्रदेव, तनिक रुकिए तो। चंद्रदेव।
5: कहो विजया, क्या बात है?
4: देवी सती की जिज्ञासा है कि आप शीघ्रता से देवी रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं?
5: क्या दक्ष पुत्री को नहीं ज्ञात कि उनके पिता दक्ष कल से महायज्ञ करने जा रहे हैं? मैं और रोहिणी उन्हीं के आमंत्रण पर वहाँ जा रहे हैं। और रोहिणी, विलंब हो रहा है।
4: देवी

0: देवी महादेवी, दक्षराज ने एक महायज्ञ आयोजित किया है। चंद्रदेव और देवी रोहिणी उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं।
1: क्या पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें इसकी सूचना तक नहीं भेजी? अवश्य ही कहीं किसी ने त्रुटि कर डाली है। चलो महेश्वर से पूछती हूँ। विजया आओ सखी, चलो
0: आइए आइए देवी।
1: ओ, स्वामी तो नेत्र बंद किए ध्यान मग्न है।
2: भारे सते
1: जी देवाधिदेव,
2: इतनी उद्विग्न क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या संशय है?
1: देवाधिदेव, मेरे पिता कल से एक महायज्ञ आरंभ कर रहे हैं।
2: हमें ज्ञात है देवी।
1: आपको ज्ञात है तो इसकी सूचना आपने मुझे क्यों नहीं दी? क्या मानसिक विलगाव के कारण मैं इतनी तुच्छ हो गई हूँ?
2: सत्य मन में ऐसी शंका मत लाओ देवी, हमें उस यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।
1: देव, दक्षराज मेरे पिता और आपके श्वसुर हैं, क्या इतना ही उनके यज्ञ में भाग लेने के लिए पर्याप्त नहीं है? अवश्य ही कहीं किसी से कुछ भूल हो गई है।
2: परंतु देवी सत्य, अनामंत्रित किसी के घर जाने से केवल अनादर ही मिलता है और यह अनादर मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है।
1: तो फिर बताएं प्रभु, मैं क्या करूं?
2: उपयुक्त तो यही होगा भारत कि हम वहां ना जाएं।
1: परंतु क्यों क्यों मेरे पिता ने आपको देवाधिदेव को निमंत्रण नहीं भेजा? इसके पीछे उनका अभिप्राय क्या है? ये जाने बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी।
2: तो तुम क्या चाहती हो सते?
1: जब तक मैं आपके इस अनादर का कारण नहीं जान लेती मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, पति की अनुमति की आवश्यकता होती है। मुझे अनुमति दे महाप्रभु।
2: ठीक है देवी सती, यदि यही तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वृषभराज नंदी।
3: आज्ञा महाप्रभु।
2: आपको महादेवी के साथ दक्ष यज्ञ में जाना है, आप इनका वाहन बने।
3: मेरे अहोभाग्य परमेश्वर,
2: देवी सती का कुशल और इनकी रक्षा का दायित्व आपका होगा।
3: आज्ञा का पालन होगा देव।
2: और देवी सती
1: जी प्राणनाथ,
2: आप एक महारानी की भांति सुसज्जित होकर दक्ष यज्ञ में जाएंगी। मेरे 60 सहस्त्रगण आपकी यात्रा में सम्मिलित होंगे।
1: जैसी आपकी इच्छा प्राणेश्वर।
4: महाज्ञानी शौनक जी, रुद्र आज्ञा से देवी सती ने दक्ष की यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान किया। रुद्रगण प्रसन्नता से रुद्रदेव का जय जयकार करते जा रहे थे।
5: कितना आनंदमय वातावरण रहा होगा।
4: दक्षराज ने यज्ञ स्थल की ओर आने वाले हर मार्ग पर धर्मशालाएं बनवाई थी। यहां दक्ष के सेवक यज्ञ यात्रियों की सेवा में तत्पर रहते थे।
6: अरे महर्षि दधीच, आपके आगमन से ये धर्मशाला और हम सब धन्य हुए। विराजी महर्षि।
7: प्रणाम ऋषिवर।
8: प्रणाम मुनिवर।
6: मैं अभी आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ।
8: तो आप दोनों भी दक्ष यज्ञ में आमंत्रित हैं?
6: कौन आमंत्रित नहीं है मुनिश्रेष्ठ, ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सृष्टि ही उमड़ पड़ी हो।
9: ब्राह्मण समुदाय को तो विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।
6: हाँ, उचित भी है, ब्राह्मण ही तो यजमान को यज्ञ फल दिलवाते हैं।
9: और हाँ, ये भी सुना है कि भृगु को ऋत्विज बनाया गया है, वे ही संपूर्ण यज्ञ कार्य संपन्न कराएंगे।
8: जिस यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि हो, स्वयं ब्रह्मा जी वेदत्रय की विधि बताने वाले हों, वहाँ ऋषि भृगु का ऋत्विज बनाया जाना सर्वथा उपयुक्त है।
6: देवराज इंद्र सहित सभी देवगण, लोकपालगण और सभी उपदेवता यज्ञ में भाग लेने आ रहे हैं।
8: अरे पक्षियों का कलरव शुरू हो गया, लगता है भोर हो रही है, हम सबको यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करना चाहिए।
9: जैसी आज्ञा मुनिवर दधीचि।

0: आइए
1: चलिए
0: चलिए चलिए लीजिए, हम यज्ञ द्वार तक आ पहुंचे।
2: प्रणाम महर्षि दधीचि।
3: प्रणाम मुनिजनों।
4: प्रणाम देखपाल। तो आपको दक्षराज ने द्वारपाल और यज्ञ रक्षक बनाया है।
0: जी मुनि श्रेष्ठ, हमें अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य भी सौंपा गया है। आइए मैं आपको यज्ञशाला की ओर लिए चलता हूँ।
4: चलिए।
5: कितने विशाल और सुंदर भवन है चारों ओर।
0: अधिपति दक्ष के विशेष आदेश पर स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया है। यहीं अतिथिगण अपने परिवारों सहित विश्राम करते हैं।
5: अरे वो देखिए, महर्षि दधीचि, देव ऋषि नारद एवं सप्त ऋषि अलग अलग गाथा गान कर रहे हैं।
6: हाँ, मैं तो यहाँ के वातावरण से रोमांचित हुआ जा रहा हूँ।
0: आइए आइए ऋषिवर दधीचि, यज्ञ मंडप में प्रवेश कीजिए।
4: जी

0: प्रणाम महर्षि दधीचि, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हुआ।
1: आयुष्मान भव।
2: प्रणाम श्री हरि।
3: प्रणाम विधात।
4: प्रणाम मुनिवर।
0: क्या हुआ मुनिवर, आप चारों ओर क्या देख रहे हैं? क्या कहीं कुछ त्रुटि रह गई है?
2: दक्षराज, मुझे परमपिता और भगवान मधुसूदन तो सपत्नीक दिखाई दे रहे हैं, परंतु रुद्रदेव और देवी सती नहीं दिखाई दे रहे, ना ही उनके आसनों की व्यवस्था दिखाई दे रही। क्या कारण है दक्षराज?
5: उत्तर दो पुत्र दक्ष।
0: मैंने रुद्र को आमंत्रित नहीं किया है।
2: क्या दक्षराज, आपने यज्ञात्मा को ही आमंत्रित नहीं किया और यज्ञ कर रहे हैं? आपने परमेश्वर को आमंत्रित क्यों नहीं किया दक्षराज?
6: और यही प्रश्न करने मैं रुद्र पत्नी सती स्वयं यहाँ आई हूँ।
0: अरे देव,
7: रुद्र पत्नी सती
0: और इस विशाल संख्या में रुद्रगण,
8: क्या होने वाला है?
7: लक्षण अच्छे नहीं है। देवी सती तो बहुत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं।
8: अरे उनके साथ आए नंदीश्वर तथा शिवगणों के नेत्र भी लाल हो रहे हैं।
7: ये तो बहुत अमंगल सूचक है।
6: उत्तर दीजिए पिताजी।
0: मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूँ, परंतु पुत्री तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। धर्म प्रतिष्ठित भगवान विष्णु, परमपिता ब्रह्मा, समस्त देवता, महर्षि दधीचि जैसे निष्पाप ऋषिगण यहाँ उपस्थित हैं। जो भी मेरे इस यज्ञ में भाग लेने योग्य है उसे आमंत्रित किया गया है।
7: दक्ष, तुम किस आधार पर रुद्रदेव को अयोग्य घोषित कर रहे हो?
0: विष्णु हरि, वे कुलीन नहीं हैं, उनके न माता हैं न पिता, वे कपाली हैं।
6: परंतु मैं किस आधार पर अयोग्य हो गई?
0: तुम उस कुरूप भूत प्रेतों पिशाचों के स्वामी उस कपाली रुद्र की पत्नी हो।
6: जो भी हो पिताजी, वो मेरे पति हैं, आपके जमाता हैं। समाज में जमाता अति सम्माननीय होता है, उसकी चरण रज मस्तक को लगाई जाती है, उसका स्थान पुत्र से भी उच्च होता है।
0: मैंने रुद्र को कभी जामाता के रूप में स्वीकार नहीं किया।
6: पिताजी, यदि आपके हृदय में रुद्रदेव के प्रति इतना दुराग्रह था तो आपने उनसे मेरा विवाह ही क्यों किया?
0: ऐसा मैंने परमपिता का आदेश पालन करते हुए किया।
5: दक्ष, मत भूलो, हमारे आदेश भी परमेश्वर की ही लीला होते हैं।
0: परमेश्वर की इसी लीला के कारण मेरे सहस्रों पुत्र मुझसे बिछुड़ गए, नष्ट हो गए। मैं प्रजा सृष्टि का उत्तरदायित्व ना निभा पाया।
6: पिताजी, प्रभु की ये लीला तो आपको स्मरण रही और उन्हीं की दूसरी

0: लीला, आप भूल गए?
1: कौन सी दूसरी लीला?
0: पिताश्री, प्रभु के आशीर्वाद से ही आपको 60 दिव्य पुत्रियां प्राप्त हुई थी। उनकी संतान परंपराओं से ही तीनों लोक भरे पड़े हैं। पुत्रों के माध्यम से ना सही, पुत्रियों के माध्यम से तो प्रजा आपको प्राप्त हुई थी ना?
2: हाँ, ये तो है।
3: देवी सती का कथन सत्य है।
4: अरे दक्षराज को तो उत्तर ही नहीं सूझ रहा।
1: सती, तुम्हारा पति उद्दंड और दुरात्मा भी है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, अभिमानी है, किसी का आदर नहीं करता। स्मरण करो सती, प्रयागराज में होने वाला वो यज्ञ, परमपिता श्री हरि और अपने पति के साथ तुम भी उस यज्ञ में उपस्थित थीं। मुझे संपूर्ण सृष्टि का अधिपति बनाया गया था। वहां सभी ने मेरा अभिनंदन, आदर, सत्कार किया, परंतु
5: प्रणाम पितामह।
6: तुम्हारा कल्याण हो पुत्र दक्ष।
5: जगदीश, मेरा नमन स्वीकार करें।
6: तेजस्वी भव, आसन ग्रहण करो पुत्र।
5: जी विष्णुदेवा।
6: पुत्र दक्ष, ये क्या भ्रष्टता कर रहे हो? त्रिलोक स्वामी परमेश्वर को प्रणाम किए बिना ही आसन कैसे ग्रहण कर लिया?
5: धृष्टता मैं नहीं परमपिता, ये भभूतधारी कर रहा है। सभी देवताओं, ब्रह्मर्षियों, ब्राह्मणों ने मेरे आने पर स्वयं उठकर मुझे सम्मान दिया, परंतु प्रेतों, पिशाचों से घिरा ये अघोरी बैठा रहा, मुझे प्रणाम तक नहीं किया।
3: दक्षराज ये क्या कह रहे हैं?
7: रुद्रदेव का अपमान कर रहे हैं।
3: परंतु देखो तो, रुद्रदेव कैसे शांत बैठे बैठे मन मन मुस्कुरा रहे हैं।
8: दक्ष, प्रजापतियों के भी प्रजापति बनने का इतना अभिमान मत करो। ब्रह्मा पुत्र को ऐसा अहंकार शोभा नहीं देता।
5: श्रीहरि, शास्त्रीय विधि की अवहेलना करना, नीति मार्ग को कलंकित करना और सदा स्त्री में ही आसक्त रहना क्या इसे शोभा देता है? मैं श्राप देता हूं, चारों वर्णों से पृथक ये कुरूप रुद्र यज्ञ अनुष्ठानों से बहिष्कृत हो जाएं, ये देवताओं के बीच बैठने के योग्य न रहे।
9: अरे षठ निर्लज्ज दक्ष, तूने स्वयं परमेश्वर को श्राप देने का दुस्साहस किया। मैं नंदी तुझे और तेरा साथ दे रहे समस्त ब्राह्मणों को इसी रुद्र तेज से श्राप देता हूं। तुम सब वेद ज्ञान से शून्य हो जाओ, भोगी बन जाओ, क्रोध मोह लोभ में फंसकर भिक्षा मांगते फिरो तुम।
10: शांत हो जाओ नंदी, शांत। हे नंदी, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, मैं ही यज्ञ फल हूं, मैं ही यज्ञ की आत्मा हूं, तो भला मुझे किसी का श्राप कैसे छू सकता है? महामते नंदी, देवी सती।
0: आज्ञा देव।
10: आइए, कैलाश लौटने का समय हो गया है।
0: जैसी आपकी इच्छा प्रभो।
5: उस दिन रुद्र मेरा तिरस्कार और उपहास करके चले गए, परंतु मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रही। रुद्र को अपने यज्ञ में आमंत्रित ना कर आज ये ज्वाला शांत हुई है।
11: तो रुद्रदेव की अनुपस्थिति का मुख्य कारण ये है। मूर्ख दक्ष, तेरे अहंकार, अभिमान और दुराग्रह ने तुझसे ये क्या करवा डाला? और तू किस ज्वाला के शांत होने की बात कर रहा है? मुझे भय है कहीं यही ज्वाला तुझे भस्म ना कर डाले, तेरा ये यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा।
5: किसी एक के ना आने से यह सफल नहीं होगा मुनि दधीची।
0: पिताजी, क्या आप रुद्रदेव को सामान्य देवता समझते हैं? जो स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ कर्ता यजमान हैं, उनके बिना यज्ञ कैसे सिद्ध हो सकता है?
11: देवी सती का कथन सत्य है। पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ के संपर्क मात्र से अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाता है। उनका इस यज्ञ में आना

0: अत्यंत आवश्यक है। परमपिता ब्रह्मा, विष्णु भगवान, आप सबको प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भी हो, रुद्रदेव को यहाँ आमंत्रित किया जाए।
1: क्षमा करें मुनि दधीची, मेरा एक निवेदन है।
0: कहिए ऋषि श्रेष्ठ भृगु, आप तो इस यज्ञ के ऋत्विज हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: किसी अनुष्ठान में किसे आमंत्रित करना है, किसे नहीं, ये अनुष्ठान के यजमान का अधिकार है। यज्ञ कैसे संपन्न करना है, इसकी भी स्वतंत्रता यजमान को होती है। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने को विवश करना धर्माचरण के विरुद्ध है। इससे यज्ञ भाव की हानि होती है।
0: वो किस प्रकार मुनि भृगु?
1: यज्ञ अनुष्ठान किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, ये तो आप भी मानते हैं महर्षि।
0: मानता हूँ मुनिवर।
1: उस फल की प्राप्ति के लिए यजमान अपनी इच्छानुरूप विधि विधान से यज्ञ करवाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आने से यजमान यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल या अफल से वंचित हो जाता है, यज्ञ विफल हो जाता है।
0: आपकी बात का वास्तविक तात्पर्य क्या है मुनि भृगु?
1: आप मेरे यजमान दक्ष के यज्ञ में बाधा ना डालें, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने का आदेश ना दें।
0: अरे भृगु, लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप और यहां उपस्थित आप समान अन्य ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो गए। दक्ष के धन वैभव और आपकी पद लोलुपता ने आप सबको इस अधर्मी का चाटुकार बना दिया है। यज्ञ के विधि विधान बदल देना चाहते हैं आप? ब्राह्मणत्व की परिभाषा बदल देना चाहते हैं? तक्षराज,
2: कहिए महर्षि दधीचि।
0: यज्ञात्मा रुद्र की उपस्थिति के बिना तुम्हारा ये यज्ञ अयज्ञ हो गया है।
3: क्या?
0: जहां धर्म का नाश हुआ हो, ब्राह्मण कुल को कलंकित किया गया हो और देवाधिदेव का अपमान किया गया हो, वहां वहां मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। अरे अधम दक्ष, तेरे प्रणाम करने पर मैंने व्यर्थ ही तुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे डाला। सत्य तो यह है दक्ष कि आज इस यज्ञ में तेरा विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तेरा। मुनिगणों आओ, यह यज्ञ पवित्र हो गया है।
2: देवेश, देवताओं, देवर्षियों, ये उचित ही हुआ कि क्रोधी, मंदबुद्धि और मिथ्यावादी ब्राह्मण इस यज्ञ से बाहर चले गए। अब आप सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को सफल बनाएं।
4: अरे मेरे पति की निंदा करने और सुनने वालों, जब तक चंद्र और सूर्य हैं, तुम नरक में पड़े रहोगे। हे ऋषियों और मुनियों, तुम में धर्माचरण नहीं रह गया है, तुम्हारे मन मैले हो गए हैं। अपने स्वामी का अनादर अब मुझसे देखा सुना नहीं जाता। मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं इस दक्षराज के शरीर से पैदा हुई हूँ। हे नाथ, पिता के इस कुकृत्य के कारण मैं आपको मुंह दिखाने योग्य नहीं रही हूँ। मैं अभी अपने इस शव तुल्य घृणित शरीर को त्याग दूंगी। हे नाथ, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें।
5: अरे देवी सती तो ध्यान लगाकर यही धरती पर बैठ गई हैं।
6: अरे उनके नाभि चक्र से ये कैसी योगाग्नि उत्पन्न हुई है?
5: इस योगाग्नि ने तो देवी को संपूर्ण रूप से घेर लिया है।
6: अरे उनका शरीर जलकर भस्म हो गया है। हाँ देखो,
5: देवी का शरीर जलकर भस्म हो गया। अरे
6: देवी सती हो गई, बस
5: बस। हे देवी सती, माते, ये क्या कर डाला आपने? मैं देवाधिदेव के समक्ष कैसे जा पाऊंगा? आपके कुशल और आपकी रक्षा का भार उन्होंने मुझे सौंपा था। धिक्कार है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है हम सब शिवगणों को।

0: शिवगढ़ाओ देख क्या रहे हो, देवी सती के इन हत्यारों का नाश कर डालो।
1: शिवगढ़ों ने सभी द्वारपालों को ध्वस्त कर दिया है।
2: अरे उधर देखो उधर, रक्षक पंक्तियों को जल के समान काटते हुए वे यज्ञ मंडप की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
3: शिवगढ़ों ने तो चारों ओर हाहाकार बजा दिया है। मेरे सभी रक्षक योद्धा अपने को असमर्थ पा रहे हैं। हे ऋषिवर, मेरे इस यज्ञ की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए।
1: मैं अभी दक्षिणाग्नि में यजुर्वेद से आहुति डाल ऋभुओं को उत्पन्न करता हूँ। अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा।
4: ऋषि भृगु ने तो आहुति द्वारा सहस्त्रों बलशाली देवता उत्पन्न कर डाले।
2: ये ऋभु तो शिवगणों से भीषण युद्ध कर रहे हैं।
4: अरे अरे देखो देखो तो शिवगण परास्त हो भाग खड़े हुए हैं।
2: वो देखो वो भाग रहे हैं,
4: भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे वो भाग गए।
5: सावधान, यहां बचे ऋषियों, मुनियों, देवताओं, नागों, आप सब तुरंत ये यज्ञ मंडप छोड़ दें, अन्यथा आपका सर्वनाश निश्चित है।
6: और महामुनि शौनक जी, देखते ही देखते दक्षराज का यज्ञ मंडप लगभग रिक्त हो गया।
7: दक्षराज ने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार उच्च पदवी व्यक्ति को मति भ्रष्ट कर सकती है। उस व्यक्ति को धर्म अधर्म, सत्कर्म कुकर्म के भेद का ज्ञान ही नहीं रहता। फिर क्या हुआ महामहिम सूत जी?
6: शौनक जी, रुद्रदेव को सती दाह का समाचार मिलना, उनका रौद्र रूप धारण कर लेना तथा दक्ष विनाश के लिए वीरभद्र और महाकाली को भेजने का प्रसंग अगली बैठक में सुनाऊंगा।
7: जैसा आप उचित समझे महाभाग।
5: श्रोताओं, शिव लीला का आज का प्रसंग शिव पुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड से लिया गया था। इसमें 26वें से 31वें अध्याय तक को सम्मिलित किया गया था।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: जानकारी अते खाली फारम साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण असीं श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करदे हां।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोड़ राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

मुरली बालकृष्ण की सबसे प्यारी सखी, जिसे मुरलीधर एक पल भी अपने से अलग नहीं कर पाते। गोपियां और स्वयं राधा भी मुरली से जलन महसूस करती। गोविंद के लिए बावरी हुई हर गोपी का स्वप्न था कि कान्हा उसे बांसुरी बने।

यही दुर्गा देवी जमुना द्वारा असंसार चक्र चाला करेश, योगियों जमनो सदैव चिंतन करेश, जमना प्रकाश थी आ समस्त जगत प्रकाशित थई रही छे। ते दुर्गा जगत जननी महाशक्ति छे। आसुरी शक्ति ऊपर दैवी शक्ति नो विजय दर्शावती आ महाशक्ति नी भारत देश मा अन्यत्र पण विशेषतः नवरात्र ना दिवसों मा नव दुर्गा रूपे उपासना के वंदना थाय छे। आसो सुद्धी पडवी थी माडी आसो सुद्धी नौम सुधी चलनारो आ दैवी शक्ति नी आराधना करनारो नवरात्रोत्सव अत्यंत मंगलमय उत्सव गणाय छे। अहीं एटलू ध्यान आपवू पड़शे के आम नवरात्रि पण संस्कृत व्याकरण नी दृष्टिए संस्कृत नवरात्र ए शब्द जोई संस्कृत मां एनो विग्रह करवामां आवे तो नवानाम रात्रीणाम समूहः इति नवरात्रम ए द्विगु समास छे। हां नवरात्र नो अर्थ थाय छे नव रात्रियो नो समूह। आ उत्सव मां प्रथम दिवस थी घट नी स्थापना करी जवारा वावी माताजी नी प्रतिष्ठा करवामां आवे छे अने शक्य होय तो नवरात्रि सुधी अखंड ज्ञान दीपना प्रतीक भौतिक दीपने पण प्रकट राखवामां आवे छे। नवरात्र ए दिवसोनी रात्रिओनी अधिष्ठात्री दुर्गा देवी एमना नव नाम छे। ते सप्तशती के चंडी पाठना कवच ब्रह्म कवच मां आलिखित छे। ते आ नाम छे।

नवदुर्ग। पहलू स्वरूप छे एमां शैलपुत्री। नवरात्रना नव दुर्गाओना स्वरूप में प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। आ शैलपुत्री पार्वती देवी छे। शैल पर्वतोना अधिराज हिमालयना पुत्रीनु पार्वती नाम छे, ये तो जाणीतुं छे, अने ए पार्वती शैलपुत्री। गिरिराज हिमालयना आ पुत्री पार्वती देवी जो कि सौना अधीश्वरी छे, तो पण हिमालयनी तपश्चर्या अने प्रार्थनाथी प्रसन्न थईने तेमना पुत्री तरीके प्रगट थया, तेथी आ शैलपुत्री एम कहेवाय छे। शैलपुत्री नवदुर्गाओमां प्रथम क्रममां आवे छे, एमनुं वंदन आ रीते थईने

दक्षयज्ञ विनाशिनी। अर्थ जोई ई दुर्गा माता सती साध्वी भगवान सदाशिव ऊपर प्रीति राखणारा भवानी संसार बंधन माथी मुक्त करणारा आर्या दुर्गा जय अपावणारा त्रण नेत्रवाळा।

प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः। कल्याण्यै कामदायै च

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

Everybody bye-bye!